ओण में बसा लगा में दरिशे गाला यंजा हा दुरिला में मेरी रामा से पान्यांगी दुकामी दुपाया कामी अंतरा दिखवाकर ओले कलिंपां ब्रास कासिमु लालो बबसा रिदोसा रनिचाउकान दरिशे गाला गांगुआ ambil menantikan harapannya membahagiakan dan kedatangan